ये प्यार की बातें हैं, इश्क की बातें हैं, चाहे अपने बच्चे से कर लो या रब से कर लो या महबूबा से कर लो या माँ से कर लो, तो ये रंग भी पंजाब का अल्लाह जानता है इश्क करवाता है कि इश्क करके देख क्या सुकून मिलता है। ये भूल जाके किससे इश्क कर रहा है, अल्लाह से कर रहा है, बंदे से कर रहा है, किससे कर रहा है, लेकिन इश्क करके देख। मैं जब ये हीर बजाता हूँ, मुझे बोल उल तो इतने याद नहीं है, और लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो बोल गा के भी बताऊँगा क्योंकि गा सकता हूँ, लेकिन ये जब मैं बजाता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। यकीन कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्यार के बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी।